कर दे वीर अयान सह गल लंगराली 5000 रुपया आदर कर दे बच्चा नु विद्या दान बख्शना तरदी कला रखनी। सरदार अवनीर सिंह अनहद सिंह सहगल आप जी दे जूरी विच 5000 रुपया आदर कर दे परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। सरदार वजिंद

करने मेहर प्रयात रखना सलाना बरसी दे नमता स्वर्गवासी पूरन सिंह किशन सिंह जी कारगर 1100 रुपए आदर होए विछड़ी हो आत्मा वानु आप जी दे चरण कमलावत निवास बख्शना। सरदार रणजीत सिंह गुरप्रीत सिंह जी 500 रुपए आदर कर दे कुलदीप सिंह दलवीर सिंह जी सोने संजोगा बेनती कर दे हरबख्शीश सिंह जी लंगरा बेंत माया आदर कर दे पातशाह कृपा करनी मेरे प्रयात रखना। काके दे ना रखन दे खुशी विच रमनदीप सिंह जी लंगरा बेंत माया आदर कर दे काके नू दीर्घ आयु दे अरोगता बख्शनी अंग संग सायो ना चढ़दी कला बख्शनी। शुकराने वजा पबल प्रीत कार दी नाभे आप जी दे हजूरी विच एक घोड़े लई भेटा 15,000 रुपए आदर कर दे पातशाह कृपा करनी परिवार विच सुख शांति दे रोगता चढ़दी कला बख्शनी अंग संग सहायो ना। सरदार मन

त्वा प्रसाद कबित हुक मल हरि गज गदह विभूत दारि गिद्वा मसान बास करी करत है गुग मट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधे मरत है बिंद के सदयता ही जिकी बटय देत बंदर सदीव पाए नंगई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है भूत बन चार छित छाना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है दृण के भजैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया दाहे पंछ की बड़ैया देत बगुला बिडाल ब्रिक धैनी ठानियत है जेते बड़ ज्ञानी तिन्नो जानी पब खानी नाहे ऐसा न प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया दाहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के भसैया दाहे बांदरी गजैया कहे आदस फिरैया दत भूत के पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भसैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवैया दाहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है गोपीनाथ गोजर गोपाल सब धेन चारी लिखी के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अड्डे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जाम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जोगी जड्डा धारी सती सच बड्डे ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्यौली गरम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड ना बहत है मानव फनिंद देव दानव न पाव वेद वेद योग देव नेद नेद कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारि सनत कुमार सी तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल हांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा रविशन के तेद यौ पुराण के तिमृत समूहन के होए होए बितय है मोन दीम तार कित अश्विनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है वीर यौ पिकंबर कित गन न परत एत भूम ही ते होय के फेर भूम ही मिलय है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े चत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीप औदलीब कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट फेस बोस दी अनेक दानी वावत है शीश को कहा भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सोतना दंडोत अस डां

शीस पटक जाके कान में खजूर धस मूड़ छटकत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आंख गोचरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेट जो सत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जो सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करुई करत है एक पाइन ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कतरत है जैसे एक स्वांग कहूँ जो किया बरागी बने का बहू संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे वारी कहूँ दंड धारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकार पर शीत काल गुंजन औगदा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीच जीर चीर चोर टाकु ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बुढ़ जड गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पाइये तापनाथ तापना अनेक तरन घायल सहत है जाप के किए तो जो पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जब नारायण पाइयत अनल आकाश पंची डोल बो करत।

हिम सोई रास कर हिम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही के सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पय अनेको भ्रमाओ है देवता अदेव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन

आग ते कनु का कोट आग उठे न्यार न्यार होई के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच होए सब पच उड़ जाहेंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे भज, के तक प्रतच होए बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जस तेज दीन, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कूकत फिरत केते रोवत मरत, केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग वासी केते मदीना मकानी वासी, के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त, केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत, केते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घस हारे, चंदन लगाए हारे, चोआचार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मड़ी मटलीप हारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाए हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब बच हारे, पंडित तपंत हारे, तापसी।

नेहं नगे हंस नेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वित्रे सुभूते भविखे भवाने यचित्रे नारायं नारंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभं भूतं वेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं नगे हंस देवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं।

कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औखधि रोग के सोख सोखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जछ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात के तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जछ विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ।

जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योत बान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात।

लख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अक्षय अतोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीध काम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई गोग काव कथत कतेब कई अग्न होत्र कई पवन हार कई गर्त कोट मृत को हार कई गर्त साक पै पत्र भच्छ नई तप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग आद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धर्म

तीरथ तीरथ भरमत्सु भरम गई अगन होत्र गई देव करम गई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदवदास पायत न पार कहूं राज रीत कहूं जोग धर्म कई सिम।

अंदर भगवान कहूँ धूप दीप कहूँ वर्गदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त सास सिमृत उचार गई भजत एक पग निराधार कई नेह देह गई गेह वास गई ब्रह्म देश देशन उदा

भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात पितं जे रचयं क्षत्रिय छत्रचितं जे राग न रेग न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जे अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आव प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग किये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे दात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुवंग।

गण किन्नर जा छ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम

न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है न छाया को

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलि अरूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न

न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है गंज से विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है, न आद है न गाद है न

राधापि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति बनस्पति जपस सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्त पी सेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के

सनक आसन केस नंदन पावही नहसेब जाछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सब रहो मुखचार सर्व सबद बतार के तर जाप ही जय जाप आद देवा गाद तेजा नाद मूरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहयो बिराज द्राज राज प्रवीन जछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसरंगे बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबत बतार के तर जानिए जय ज्योत शेष नाम सहंस वर्ण नेत पूर्ण होत सोद सोद हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागम

0: माता साहिब देवी जी दे ताई उना दे ताई ए बचन करना कीता
1: हट दिल्ली पुर जाओ
0: उना नू बचन कीता कह कह आप जी हुण इथों वापस चल जाओ। बाबा राम कुवर जी उना दे सत्कार योग माता जी लैण दे लई आए हां ते तुसी उना दे नाल जाओ तुसी पंजाब नहीं जाना तुसी दिल्ली जा करके टिक जाओ।
1: बस पत्नी के नित बाहो
0: उत्थे जा करके माता सुंदरी जी जड़े हन सत्कार योग साडे महल जड़े ते ओ उत्थे रिया करदे तुहाडे ते ओ उना दे कोल जा करके तुसी दिल्ली दे विच वासा करना करो।
1: संगत तुम सेम
0: उत्थे जा करके डेरा करना करो गुरु घर दे वधिया प्रबंध करना करो खालसे दी पंजाब आदिक अपने सिंघां दी बाग डोर तुसी दोवें रल मिल करके सांभो सारी संगत ने तुहाडी बहुत सेवा करनी है।
1: हम सम दुहवन दर्शन पावा
0: ते हम सम पाव के साडे नाल ते साडे दर्शन तुहानू दोवां नू उत्थे प्राप्त होणगे।
1: इत्यादिक बहुती समझाई
0: इत्यादिक सतगुरु महाराज जी ने माता साहिब देवी जी नू बहुत समझाउणा कीता
1: जो न संग विशाल हटाई
0: ते ओ नाल नहीं हटदे उहनां ने कहा सतगुरु महाराज मैं आप जी नू छड करके नहीं जाणा तुहाडे नाल ही
1: रहना।
0: उन्हां ने भी प्यारे प्राण करना कीता। हुण मैं एक बेनती करा के माता साहिब देवां जी जिहड़े हन जदों इन्हां दा विवाह कार्ज होया सतगुरु महाराज जी दे नाल एक कुआरा डोला बन के रहे इन्हां दा इतिहास दे विच प्यारे सरकारी दस्तावेजां दे विच भी साहिब देवी कुआरा डोला कह करके इन्हां नूं संबोधन कीता गया ते सतगुरु महाराज जी दे कोल रह कुआरे बन करके रह कुआरापन इन्हां दा जिहड़ा खाली नहीं होया। उस तो बाद इन्हां ने प्रण कीता सी के रोज मैं सतगुरु महाराज जी दे दर्शन करना ता करके इत्थों तक माता जी नाल आए। हुण कहण लगे महाराज हुण आप जी मैनू वापस भेज रहे हो मैं आप जी तो बगैर मैंने प्रण कीता के जदों तक जीवित हाँ तुहाडे रोज दर्शन करने जे तुहाडे दर्शनां दी प्राप्ति नहीं होवेगी तां सतगुरु महाराज मैं प्रशादा नहीं छकना जे प्रशादा नहीं छकिया ते उंजी मैंने मर जाना
1: है।
0: ते कृपा करो महाराज मैंने ये प्रण करना कीता। देखो नेम इन्हां तो पता लगदा के सिंह जां ए गुरमुख प्यारे जदों अरदासां कराउंदे नेम दी अरदास कराउंदे ओनू किस तरह प्यारे पक्का रखदे ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
1: ਮਾਤ ਸੰਗ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹਟ ਪਰਿਓ
0: ਤੇ ਮਾਤ ਸੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਵੇਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
1: ਮਦਰ ਦੇਸ਼
0: ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਦਰ ਦੇਸ਼

मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो

सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सात पाछै बछरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

भिन्न भिन्न तहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह पिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतपज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं समट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जुते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जावन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिया है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मु सब होई दुष्ट छा छय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबार।

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख देख जग मैं तो चल राख आप मुहे और ना दल तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो।

का सर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नितड़ ध्यान है संत अंत लाएंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा तिन बेदियन की कुल बिखा प्रगटे नानक राय सब सिखण को सुख।

साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पांच प्यारे चाली मुक्तियो सर्व शहीदो मरीदो।

भैव चिन्ह फिरै सिर भार, भैव च राजा धर्म दुवार, भैव सूरज भैव चंद, कहो करोड़ी चलत न अंत। भैव सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भैव च आडाने आकाश, भैव जोत महाबल सूर,